0: pozivamo vas da doživite srce hrvatske zajednice u hrvatskom klubu Kralj Tomislav u Edenza parku. Klub Kralj Tomislav nije samo običan klub. On je središte naše...
1: Pranam, Jai Mithila, Namaskar. Asandi Sahit, Samastra Australia mein rahanihar. Apan Maithil Parivar ke Hardik Abhinandan. Aasun Rahal Chi, Mithila Gunj. अपन भाषा अपन संस्कृति अपन पहचानक स्वर 2000 98.5 FM पर प्रत्येक रविवार सुबह 8 से 9 बजे धर हम छी यहाँ के अपन शिशिरेंदु झा आए रविवार 23 अगस्त 2026 सिडनी में इस समय मौसम बादल से घेरल है करीब 12 डिग्री सेल्सियस के तापमान रह के अनुमान है 9 बजे तापमान लगभग 14 डिग्री हेवाक संभावना है दरभंगा में बरखा करीब 30 डिग्री और जनकपुर में बादल के संगे करीब 31 डिग्री तापमान है स्टूडियो से एक बार फिर सिडनी दरभंगा और जनकपुर के बीच ई आवाजक सेतु पर हम अहाँ सबके स्वागत करे छी आई के विषय बहुत खास है अयोध्या सा मिथिला धर मिथिला में श्री राम के प्रथम धर्म यात्रा अयोध्या से निकलला के बाद श्री राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के संग कौन कौन पवित्र स्थान पर गेला ताड़का वध कलथि सिद्ध आश्रम के महत्व की है गंगा केना स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित भेली अंततः मिथिला पहुँचला के बाद रामक कथा सीताराम के दिव्य गाथा में केना बदल गेल आए हम अ संपूर्ण यात्रा के सरल कथा शास्त्रीय संदर्भ आ मिथिला के भावना से जोड़ी कर सुनब हमरा संगे किछ गेस्ट छथि सबसे प्रथम गेस्ट श्री यतेंद्र गुप्ता जी
2: नमस्कार मैं भी मिथिला सुन के फिर सीखने की प्रयास कर रहा हूँ तो अभी आपने जो भी बोला है मैं समझ गया हूँ तो जो हिंदी वालों को भी मैं आपको प्रोत्साहित करूँगा कि आप सुनिए और आप पाएंगे कि धीरे धीरे आप मिथिला में घुस गए
1: एकदम
2: है ना मिथिला गूंज में आ गए
1: हमारी दूसरी गेस्ट हैं खुशबू झा
3: नमस्कार सबको टाके
1: और अगली गेस्ट हैं संध्या झा
4: नमस्कार सबको टाके
1: और नवनीत झा जी
5: हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन सब गोटा के नमस्कार
1: ऐसा पहिने हम सब आगा बढ़ी शुरुआत करे छी मंगलाचरण सा

0: तो केहन लागल अपने सबके गीत हमर बचपन के बहुत याद से जुड़ल है माँ दादी सब गाना गाना गबैत रहें और अखन तक ये गीत बहुत हृदय में उतरल है। तो चलू आगे बढ़े छी क्योंकि आई के विषय है मिथिला में रामायण और हमरा अपना गेस्ट पैनल में संध्या झा जे अई भूमि से जुड़ल हुनका ई विषय में काफ़ी ज्ञान छन्। तो संध्या जी आई के संदर्भ में अगर अहाँ के पूछल जाए कि मिथिला में राम के पदार्पण या मिथिला में राम के भेला से मिथिला केना बदल गेले तो की वो की अपने के पास की कह सके छे के ऊपर में।
1: देखो सबसे पहले तो हम कहब कि मिथिला जे छे वो एक केवल स्थान नहीं छे। मिथिला अगर स्थान के रूप में अहाँ सब देखबै तो बहुत रिच डाइवर्सिटी छे ओता के। बेसिकली मिथिला ओ धरती भेले श्री राम के संदर्भ में जतः ओ अपन पराक्रम प्रकट केलखिन शिव धनुष के रूप में। आर हुनकर लाइफ के सबसे बड़का चीज हुनकर अर्धांगिनी हुनका मिथिला के धरती पर भेटलन। तो चाहे अयोध्या श्री राम के जन्म भूमि भेले बट राम जी के सियावर राम या सीता राम जे चीज बनेलकै ओ छले मिथिला के धर्म भूमि। तो अइ संदर्भ में एक बहुत बढ़िया छै कि नाही त कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ मिथिला अवध विशेष ते जगु सब भयो अनाथ। त सीता जी जखन राम जी सने गेलखिन तब मिथिला और अयोध्या बेसिकली एक दोनों एक चीज एक प्लेस भ गेलै ओतऽ मतलब दुनू के साहस करुणा ई सब किछु मिक्स भेलै ओ धरती पर। तऽ जखन ओ सब वनवास लए गेलखिन तऽ सिर्फ अयोध्या नहि छलै जे जाहिमे दुख भेलै तऽ मिथिला जे छलै ओहूमे लोक सब काफी भारी दुखी भेलै।
0: बहुत बहुत बढ़िया और बहुत सार गर्भित बात कहलियै अपने। और ई जे चौपाइ कहलियै ई अयोध्या कांड से छै तुलसी रामायण के। और जहन महाराज दशरथ के मृत्यु भ जाइ छनि तहन गोस्वामी तुलसीदास कहने छथिन जे मात्र हुनका गेला सँ अवध के क्षति नहि भेलै, ई पूरा जे भारतवर्ष रहे अवध से लऽ कऽ मिथिला तक दुनू परिवार अनाथ भ गेलै। एकर मतलब ई भेलै जे अवध होय चाहे मिथिला होय दुनू एक परिवार जकाँ रहि रहल छलै। बहुत सुन्दर व्याख्या केलियै अपने और अई श्रोतागण सबसे निवेदन है जै पर किछु आधारित प्रश्न हुआ तो अवश्य पूछबनि हिनका सँ क्याकि मिथिला से ई छथि आई देखने छथि ओहि चीज के जीव जीने छथि तऽ मात्र भूभाग नहि रहि गेल छै, एकटा जीवंत चेतना छै संस्कृति छै जै पर हमरा सबके गर्व हेबाक चाही। आउ आगा बढ़ै छी। जहन ई कथा प्रारम्भ भेलै तऽ महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में गेलखिन तब ओहि समय में राक्षस सबके पिशाच सबके बहुत आतंक रहे जंगल में और साधु महात्मा सबके तपस्या नहीं करो देल जाइत रहे। तो ओहि संदर्भ में विश्वामित्र दुनू भाई के मांगा गेलखिन ओतऽ से ई मिथिला के जे यात्रा छन राम लक्ष्मण के ई प्रारंभ होइ छै। तो नवनीत जी छै संगे, नवनीत जी ई यात्रा के विषय में कहियो किछु अपने जे केना रहलनि हिनकर यात्रा की सोचि कऽ महाराज दशरथ दुनू छोट बालक के विश्वामित्र संगे संग लगा देलखिन और छोट बालक होइतो कोन तरह से ओ सब अपन कार्य के पूर्ण केलथि।
2: जरूर जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर जी, बहुत बढ़िया शुरुआत भेलै। और एक लाइन में हम हिंदी में भी कह दै छियै ये जो जर्नी है ये भगवान राम का अयोध्या से मिथिला की जर्नी है जिसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो अब हम मैथिली में बतबै छी एकर कनी कॉन्टेक्स्ट और कहाँ से शुरुआत भेले। तो बेसिकली एकरा अयोध्या से सिद्धाश्रम के जर्नी कहे छे। तो कथा आरंभ होय छे अयोध्या से जहाँ पे महर्षि विश्वामित्र जी राजा दशरथ के दरबार में गेलखिन और उ यज्ञ करित रहथिन ओहिसे पहले जैमे उनका राक्षस सब जेना मारिच सुबाहु ई सब बहुत बाधित करैत छलै। तऽ ओ एहिसँ काफ़ी व्याकुल और विचलित रहथिन। तऽ ओ गेलखिन राजा दशरथ जी के दरबार में और रिक्वेस्ट केलखिन जे अहाँ अपन मुनि श्री राम जी और लक्ष्मण जी के हमरा संग पठाबू एल आग्रह केलखिन। तो राजा दशरथ जी भी कनी व्याकुल भेला, लेकिन गुरु विशिष्ट से वो कनी सजेशन लेलखिन और गुरु विशिष्ट जी समझेलखिन जे विश्वामित्र जी के संरक्षण में रामक कल्याण ने निश्चित छे, तो अहाँ इनका साथ इनका भेज सके छी राम और लक्ष्मण के। तो अ पे एक चौपाई छे जे बड़ा सुंदर चौपाई छे, पुरुष सिंह दो वीर हर्षि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन।
0: वाह वाह,
2: एकर
0: बालकांड के चौपाई छे रामायण सा, और वशिष्ठ जी राजा दशरथ के मन के शंका के निवारण केलखिन है, जहाँ विश्वामित्र संगे भेजियन हुनका संगे रहला सा राम लक्ष्मण के कल्याण हेतै,
2: राम कल्याण हेतै जगत कल्याण भी दुनू से हेतै। तो ई दुनू एकर मतलब छे जे दुनू वीर भाई प्रसन्नता पूर्वक आ मुनि संगे पठा दियो और भय करे कोनो चिंता नहीं छे। ओकर बाद ठीक छे, तब राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ गेलखिन। पहल पड़ाव छे यहाँ पे सरयू नदी के दक्षिणी तट पे। तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार एत विश्वामित्र जी श्री राम के बला और अति बला के विद्या प्रदान केलखिन। तो जैसे थकान भूख प्यास और पे विजय होय छे, स्मरण शक्ति और तेज बहुत बढ़े छे, तो मानसिक और ये इससे केवल शस्त्र शिक्षा नहीं देलखिन रही राम लक्ष्मण के, संयम और आत्मनियंत्रण के भी दीक्षा छले। तो विश्वामित्र जी के काफ़ी बड़ा अहम भूमिका छे राम और लक्ष्मण के शिक्षा और दीक्षा में।
0: बहुत नीक। अ पर आगा बढ़ा सा पहने क्या कि हिनकर सबके यात्रा चलन है राम भगवान के, लक्ष्मण जी के, विश्वामित्र संगे मिथिला के, और मिथिला में हुनकर सबके विवाह भेलन। तो ऐसा पहने कि हम सब आगा बढ़ी एक संगीत सुन लेल जाए, जैसा जे बुझा में आत अपने सबके जे अगला वाला जे अथी छे, अगला आवा वाला जे संदर्भ छे से की छे।

0: तो केहन लागल अपने सबके संगीत आब कियाकि हमसब आगा बढ़ रहा छी बहुत यात्रा में तो एहिसँ पहिने कि अगला बातचीत होय अहाँ सबके याद दिया दी कि हमरा सबके एकटा प्रोग्राम जे हो वाला अछि दुर्गा पूजा मिथिला महोत्सव 2026 17, 18, 19 अक्टूबर भोर 8 बजे से शुरू भ जेतै। माता दुर्गा के पदार्पण भ चुकल छनि, बहुत शीघ्र ऑस्ट्रेलिया में आबि जेती और 3 दिन मिथिला के रंग में अपने सब सराबोर रहब। 17, 18, 19 अक्टूबर 3 डेज फॉर दुर्गा पूजा एंड मिथिला महोत्सव 2026। बुक योर डेज, कीप योर कैलेंडर ब्लॉक्ड फॉर दिस 3 डेज। तो आओ आगा बढ़ल जाए। तो नवनीत जी यहाँ किछु कहि रहल छलिए जे हुनका सबके ज्ञान भेटलनि, ओहिके बाद हुनकर यात्राके की भेलनि, केना कंटिन्यू केलखिन यात्रा?
1: जी जी, तब पहिल पड़ाव हम सब डिस्कस केलिए रहे जहाँ पे सरयू नदी के तट हुनका सबके विश्वामित्र जी द्वारा शिक्षा दीक्षा और किछु ज्ञान भेटले। दोसर पड़ाव पे अब चले छी जहाँ पे उ सब सरयू और गंगा के संगम निकट कामाश्रम लंगेलखिन। तो विश्वामित्र जी कहलखिन जे एही क्षेत्र में भगवान शिव जे रहथिन उ कामदेव के भस्म केने छला।
0: अच्छा।
1: और राम जी के यात्रा केवल पैदल चले वाला नहीं रहे, ई प्रत्येक पर्व पर गुरु हुनका भारत के भूगोल, इतिहास और ऋषि परंपरा और धर्म के ज्ञान दैत छला। तो ई हुनका सब लोग काफ़ी समृद्ध एक जर्नी रहे। ओकर बाद उ सब गंगा पार केले के बाद सब मलद कुरुष प्रदेश जे उजड़ल वन रहे वहाँ पहुँचला। मलद ई वन पर ताड़का जी का आतंक छले।
0: अच्छा,
1: ध्यान रख,
0: इन्फॉर्मेशन है
1: जरूर। तो ई मलद कुरुष के प्रदेश के बारे में कनी और कहब जे ध्यान रखू जे ताड़का वध मिथिला में नहीं भेल छले, मिथिला पहुँचबा के बहुत पहिने भेल घटना है। स्थानीय परंपरा के अनुसार ताड़का वन में आज के जे बिहार के जे बक्सर है, उ बक्सर एक चरित्रवान क्षेत्र जोड़े छे जहाँ पे ग्रंथ में आधुनिक बक्सर के नाम छे, लेकिन वो पहले मलद कुरुष और ताड़का वन के नाम से प्रसिद्ध रहे, जकर उल्लेख रामायण में भी छे। तो ये पे एक चौपाई कहल जाए जे विश्वामित्र जी कहलखिन चले जात मुनि दिन्ही दिखाई, सुनी तारका क्रोध करिधाई, एक ही बान प्राण हरिलिन्हा दीन जानी तो तेही निज पद दिन्हा।
0: वाह, एक बाण में ताड़का के वध कर दिलके राम भगवान। फिर से बालकांड के अपने पढ़ लो हैं, बहुत बढ़िया, बहुत निक संदर्भ है। तो श्रोतागण अहाँ सब उम्मीद है जे यात्रा

0: रहा क्या नंद लॉर हॉल हैव और प्रत्येक पग पर जना जना श्री राम का बढ़ रहा छ हुनकर चेतना में वृद्धि भऽ रहा छन ई बात इहो बात एत बुझा जोगर अछि जे मिथिला से पहिने प्रत्येक प्रकार के जे कष्ट छ जे जे संघर्ष श्री राम भगवान झेल चुकल छथि और के बहुत सफलतापूर्वक पार कऽ चुकल छथि तो अभी यात्रा चलत रहते जना अब आगावला समय में राम भगवान कतौ फिर अपन विश्राम लै छथिन और केना आगा बढ़े छथिन नवनीत जी
1: जरूर जरूर तो जे चौपाई कहलो तो मतलब ई भेले जे ओई समय के मलद कुरुष और आई समय के बिहार के बक्सर यहाँ पे तारकावध भेले और विश्वामित्र जी मार्ग देखलखिन जे तारका कतौ छथिन श्री राम जी एक बान में हुनकर परम गति के प्राप्ति दे देलखिन एकर बाद तारकावध के बाद विश्वामित्र जी बड़ा प्रसन्न भेला और उस श्री राम के बहुत दिव्य शास्त्र और अस्त्र के शिक्षा और बहुत तरह के एक शिक्षा दीक्षा प्रदान केलखिन फिर तीनों राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी सिद्धाश्रम पहुँचलखिन सिद्धाश्रम वह तपभूमि है जहाँ पे वामन अवतार के स्मृति जुड़ल तो श्री राम और लक्ष्मण जी छः दिन यज्ञ के रक्षा केलखिन यही एत विश्वामित्र जी यज्ञ करित रहतीन जहाँ पे उनका सुबाहु और मारीच सबसे बड़ा विघ्न और कष्ट और बड़ा परेशानी होते रहे तो यज्ञ केलखिन यज्ञ के छः दिन तक रक्षा केलखिन श्री राम और लक्ष्मण और मारीच के दूर समुद्र में पठा दिलखिन और सुबाहु का वध भेल यहीं पे तो अई तरह से जय पर्पस ले श्री राम और लक्ष्मण जी आयल रहतीन विश्वामित्र के ऊ पर्पस उनकर सफल भेले और यज्ञ के समापन भेले और यहाँ पे बक्सर तक की जर्नी यहाँ पे उनकर भेले अब आगे यहाँ से भी छे जर्नी जहाँ से ऊ बक्सर साहब मिथिला तक जतिन
0: अगला पड़ाव में जे सबसे हमरा महत्वपूर्ण बात बुझायल जे विश्वामित्र उनका लग गेलखिन जत शंकर भगवान कामदेव के उद्धार केलखिन फिर विष्णु भगवान के वामन अवतार भेलन ई विश्वामित्र सन के गुरु बुझ सके छलखिन जे कौन मार्ग से जैसे राम भगवान के लौ जाके छे बहुत सुंदर
1: भगवान के लीला छ रहे पहले से जे ई मार्ग से चले के छे और कका के घर उद्धार करे छे मिथिला पहुंचे
0: छे बिल्कुल बिल्कुल सही में के गुरु छे या के शिष्य छे आगा चल के विश्वामित्र सो कहलखिन जे ई सबटा लीला तो अही के छे हम तो मात्र ओकरा एग्जीक्यूट कर रहल छी ई बात बिल्कुल सही है अपने के त सिद्धाश्रम पहुँचला के बाद वामन अवतार के महत्व ओहि आश्रम में छे ओहि के उपरांत जहन ई सब विदा भेलखिन तहन ई यात्रा चललै आगा और ओतऽ सँ मिथिला तक के यात्रा जे छे से खुशबू जी अहाँ अगर एहि पर कनी प्रकाश डालि पेबै जे की भेलै ओहि के बाद सिद्धाश्रम के बाद
1: ऐसे पहले हम सब अगर श्रोतागण के अपन वेबसाइट और नंबर दे सकिए अगर सब कोनो प्रश्न पूछे चाहे
0: छे बिल्कुल बिल्कुल नवनीत जी हाँ
1: तो वह तो अहाँ सब सुन रहल छी मिथिला गुंज 2000 98.5 FM जहाँ प्रत्येक परिवार 8 से 9 बजे तक हम सब ई चैनल सुने छी तो हम सब जे अयोध्या से मिथिला के जर्नी बता रहल छी भगवान राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी के बहुत रोचक एक कथा छे कथा नहीं छे ई सत्य घटना छे और जे भगवान का अपन लीला छे तो ऐसे जुड़ल अहाँ कोनो प्रश्न पूछे चाहे छी या ओनाहू भगवान श्री राम के जीवन के कोनो घटना से रिलेटेड किछ बतबै लए चाहे छी कोनो एक्सपीरियंस या कुछ प्रश्न पूछे चाहे छी जेना कि अहिल्या उद्धार भेले पुष्प वाटिका में सीता जी के केना दर्शन भेले शिव धनुष भंग भेले सीताराम विवाह मिथिला जुड़ल कोनो प्रश्न पूछे चाहे छी तो हमर सबके वेबसाइट पे भी अहाँ जा सके छी मिथिला कल्चरल @gmail.com ओतो पठाओ और हमर सबके जे नंबर छे 0426-399-461 ऑस्ट्रेलिया कोड लगा सके छी इंटरनेशनल जे श्रोतागण छी +61-426-399-461 अई पे भी अहाँ मैसेज कऽ सके छी तो जरूर अपन मैसेज या क्वेश्चन या किछ भी अहाँ जुड़ू अई वेबसाइट और नंबर पे
0: और आवा वाला जे इवेंट छै के बारे में कनिक अपडेट दऽ दी तो जतेक श्रोतागण छी अपने सब अब अपना सबके बहुत नम्हर इवेंट हो वाला छे दुर्गा पूजा मिथिला महोत्सव संग सहित दुर्गा पूजा और मिथिला महोत्सव में पार्टिसिपेट करे लेल अपने सब संपर्क करियो 0426-399-461 अथवा वेबसाइट विजिट कर सके छी अपने www.mithilaculturalsociety.au www.mithilaculturalsociety.au। आओ तो आगा पढ़ल जाए तो सिद्धाश्रम से निकलला के बाद फिर श्री राम लक्ष्मण आरो विश्वामित्र के की भेलन अइ पर प्रकाश डाल के छन श्री श्रीमती खुशबू झा जी के तो की भेले कहियो अइ के विषय में किछ अपने।
2: नमस्कार श्रोतागण, तो हम जेना कि नवनीत जी बतेलखिन हैं जे सिद्धाश्रम यज्ञ जे छे ओकरा बाद यज्ञ पूर्ण भेले ओकरा बाद विश्वामित्र जी के जनक महाराज के धनुष यज्ञ के देखबाक लेल निमंत्रण भेटले, इनविटेशन, बेसिकली इनविटेशन एलन धनुष यज्ञ लेल। आर विश्वामित्र जी तखन श्री राम लक्ष्मण आर अन्य ऋषिगण संगे मिथिला चललखिन। वाल्मीकि रामायण में इन ई मार्ग के जे छै ने से बहुत बढ़िया से बतायल गेल छै रास्ता के। तो पहिने वो सब सोनभद्र अर्थात सोन नदी के तट पर रुकलखिन। ओकरा बाद विश्वामित्र जी अपन वंश कुश कुशनाभ और अन्य राजकीय कथा सुनलखिन और कौशकी नदी पर जाकर जकर कौशकी नदी नदी जिनका कहल जाय छन, जिनका मतलब पहचान छन कौशकी नदी। और जे पहले
0: कौशकी नदी के जे वर्तमान नाम छन से कोशी नदी
2: कोशी से? कोशी से जुड़ल जाय छन। और अपन और उनकर बहिन बहिन छलखिन।
0: यो कथा छे जे जे कोशी नदी विश्वामित्र के बहिन रहते
2: बहिन रहते
0: जिनका नाम कौशकी रहे। हां,
2: और तक बाद फिर वही वही गंगा तट पर जे छे पड़ाव भेलन विश्वामित्र जी भागीरथी तट तप और सागर पुत्र के उद्धार व गंगा अवतरण महान कथा से वो सुनेलखिन। तुलसीदास जी अही विशाल प्रसंग के बहुत सुंदर ढंग से संक्षेप में कहे छथिन। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पाविनी गंगा। गाधी सुनु सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुरसार मही आई।
0: वाह, राम लक्ष्मण गंगा तट पर पहुंच गए थे। गाधी पुत्र अर्थात विश्वामित्र के पिताजी के नाम गाधी रहन, तें गाधी पुत्र भले जे जे गंगा के पृथ्वी पर केना लायल गेले। राजा सगर के कहानी कहलखिन सुनेलखिन विश्वामित्र राम भगवान के लक्ष्मण जी के। तो ऐसे पहने की आगा बढ़ी, आओ एक बेर फिर लौ चले यहाँ के मिथिला के मिठास से जुड़ल गीत संगीत में एक गाना सुनल जाए।

0: हेलो श्रोतागण, तो देखलिए हम सब के ना मतलब राम भगवान के जर्नी जे नवनीत जी बतेनाई स्टार्ट केलखिन, हम ओकरा आगा लऽ कऽ चलि रहल छी। तऽ ओकरा बाद जे छै अहाँ सब गंगा अवतरण के महान कथा सुनलियै आर तुलसीदास जी के प्रसंग छै, ई सुंदर ढंग सँ बतेने छलखिन हम कहलहुँ। तऽ गंगा पार केला के बाद ओ सब विशाला नगरी पहुँचलखिन, जतऽ राजा सुमति हुनकर सबके स्वागत केलखिन। विशाला नगरी अखन के ये में वैशाली कहल जाइत अछि, हालांकि विद्वान के संदर्भ में अगर सोचबै तऽ कनि भौगोलिक मतभेद छै एहिमे, बट हम मिथिलावासी लेल विशाला जे छै अखन के युग में वैशालिये छै। एहिठाम समुद्र मंथन के तथा प्राचीन देव दानव के कथा सबसे ओ सुनते लोग आगा के यात्रा में।
1: तो आप अपने यहाँ कह रहा छे जे वैशाली पहुँचला के बाद उनका समुद्र मंथन के कथा, देव दानव युद्ध के कथा ये सब सुनायल गेलन। ई एकटा मान्यता आरो छे जे एक्चुअली समुद्र मंथन जे भेल रहे से ओहि स्थान पर भेल रहे, तें विश्वामित्र राम भगवान के लक्ष्मण जी के कथा सुनेलखिन समुद्र मंथन के, जैसा बहुत तरह के रत्न निकललखिन, बहुत तरह के किछु खराब चीज सब सेहो निकललै। तऽ जे कोनो मंथन होइ छै, जेना कोनो विचार छै, जेना कोनो हमसब बैस कऽ कोनो विषयमे मंथन करै छी, तऽ दुनू तरहके चीज बाहर अबै छै, लेकिन अपना सबके जे पॉजिटिव छै ओहिमे सँ जे बढ़िआँ चीज छै ओहि लऽ कऽ ओहिपर कार्य करबाक आवश्यकता अछि।
0: जरूर जरूर। तऽ फेर ओकरा बाद जे छै से मिथिला पहुँचबासँ पहिले एकटा निर्जन आश्रम देखेलनि ओतऽ। महर्षि गौतम मुनिके आश्रम छलै। आ श्रीराम पुछलखिन जे एतऽ पशु पक्षी अथवा जीव जन्तु किएक नहि छै, तऽ विश्वामित्र जी हुनका माता अहिल्याके कथा सुनेलखिन। अहिल्या स्थान अगर कहू तऽ मिथिलामे अहिल्या स्थान एखनो छै, अहाँसब जा सकै छी। ई चौटा गाम लग छै अहिल्या स्थान। आर हमरा ई संयोग भेटल छलै जे दू साल पहिले हम ओतऽ ट्रैवल केने रही अपना मतलब अपना बच्चा सब संगे, तऽ कियाकि हमर जे पुत्र छथिन ओ काफी एंथूमे रहै छथिन मिथिलाके बारेमे जानऽ लेल, कियाकि ओतऽ बॉर्न ब्रॉटअप नहि छथिन, लेकिन हुनका इंटरेस्ट रहै छनि, तऽ हुनका लऽ गेल रहियनि हमसब। आर ओ देखि कऽ बहुत ये छलखिन, कियाकि ओतऽ बहुत बढ़िआँ मन्दिर बनि गेल छनि अहिल्या माताके। ओतऽ बैंगन चढ़ायल जाइ छै कोनो स्किन प्रॉब्लम अगर होइ छै, ई हमसब बच्चासँ सुनने छियै अपना दादी माँसँ आ सबसँ, कि अगर कोनो स्किन इश्यू छै तऽ अहिल्या स्थानमे बैगन चढ़ा दियौ, आओर हम देखने छियै जे ठीक भऽ जाइ छै।
1: वाह, ई तऽ श्रोतागण अहाँ सब लेल बहुत नीक जानकारी अछि। स्किन प्रॉब्लम लेल अपने सब विजिट करियौ, अवश्य जइयौ ओतऽ। आओर एकटा बात हम एतऽ जोड़ऽ चाहब जे बहुत समयसँ हम सुनि रहल छियै आओर ई चर्चाके विषय छै जे रामायण एकटा माइथोलॉजी छै, लेकिन अगर यदि देखल जाए, यदि पढ़बै अपने आओर देखबै सच्चाइ की छै, तऽ ओहिमे अहाँके देखायत कि केना राम भगवानके यात्रा अयोध्यासँ शुरू होइ छनि, केना ओ बक्सर होइत, वैशाली होइत, मिथिलाके तरफ अग्रसर करै छथि, आ ई सब स्थान आइके समयमे सेहो छै। तैँ एकरा माइथोलॉजी कहके हमरा सबके भूल नहि करबाक चाही। ई हमर अपन सबके इतिहास अछि, एहि इतिहासपर अपना सबके गर्व हेबाक चाही जे एहन महापुरुष हमर सबके पूर्वज छलाह है। तऽ एहि लेल हमरा सबके एकटा गर्वके विषय अछि। जी
0: सॉरी अहाँके कट करऽ लेल, माइथोलॉजी तऽ बिल्कुल नहि छै रामायण। अगर अहाँ एखनो मिथिलामे जइयौ 2026मे, हमर किछु फ्रेंड्स छथिन जिनकर एखन नया नया मतलब शादी भेलै ने, तऽ टिल आइयोके डेटमे मिथिलामे विवाह जे छै राम सीताके विवाह जकाँ होइ छै टिल नाउ। ए मतलब डजंट मैटर कि मैथिल कतऽ छै, अगर मिथिलामे बिआह भऽ रहल छै तैयो, मिथिलाके बाहर बिआह भऽ रहल छै तैयो, मैथिल जे छै मेक श्योर करै छथिन। कमसँ कम हम जतेक चिन्है छियनि, हम जतेक बिआह अटेंड केने छी, हम देखने छियै जे जेना चारि दिनके नमक नहि खुआयल जाइ छै, बहुत सारा रिचुअल छै। आओर हमरा पर्सनली मिथिलाके रिचुअल्स बहुत नीक लागैए, जेना एग्जाम लेल जाइ छै, जेना राम भगवानके लेल गेल छलनि, तो मैथिल ब्याह जे छे आयो के डेट में रामे सीता के विवाह जका मतलब जना राम भगवान धनुष तोड़ने रहथिन और तखन उनका सीता बैठलखिन तो मिथिला में आयो जे छथिन से कनिया एना नहीं भेटै छथिन ओइ लेल अहाँ के बहुत परिश्रम करो पड़े बहुत एग्जाम से गुजरे पड़े
2: बिल्कुल जना राम जी धनुष तोड़ कर सीता जी के yes. मंगलखिन ओनाहिते जना हमरा सबके एखनो होइ छै कि जब भी लड़का आता है लड़की से शादी करने के लिए तो बहुत अच्छा वर्ड है जिसे बोलते हैं परिछन
0: परिछन
2: कि पहले हम टेस्ट करेंगे कि तुम हमारी लड़की के लायक हो भी कि नहीं तुम चाहे पूरी बारात सब कुछ लेकर आए हो बट अगर तुम हमारे टेस्ट में फेल हो गए तो हम नहीं मानते कि तुम
0: बारात लौटा देंगे
2: हम बारात लौटा देंगे
3: डेंजरस वाला काम हो गया
2: और वो भी ऐसे वैसे नहीं किसी को भी दे देंगे लड़की तो यहाँ तक कि राम जी भी इस टेस्ट से नहीं बच पाए थे तो आज भी क्या कहते हैं राम जी के कॉन्टेक्स्ट में मतलब जैसे हम हंसी मजाक में बोल देते हैं तो एक स्लैंग कहिए या गाली देना तो मतलब हंसी मजाक वाला वो गाली देना छेड़खानी करना तो मिथिला में बहुत फेमस है तो राम जी को भी गाने में डाल के इवन राम जी को भी नहीं छोड़ा गया इस चीज में
0: हम
2: तो
0: आजकल के इंसान है मिथिलावासी इकलौते हैं जो राम भगवान को भी गाली देते
2: इसलिए उनके लिए स्पेशल पाहुन वर्ड यूज किया जाता है कि हमारे दामाद हैं
3: तो
2: हमारा इतना हक तो बनता है
3: तो एक जो अगर कुछ ऐसी शादी यहाँ होती है हम सब लोगों को एक्सपीरियंस करना चाहिए
0: जरूर जरूर जरूर मिथिला की शादी मिस करने वाली नहीं होती है क्योंकि अगर आप सच में देखेंगे ना जब लड़का आता है शादी के लिए उनके कपड़े उतरवा दिए जाते हैं
2: फिजिकल फिटनेस का चेक यहीं से स्टार्ट हो जाता है
0: लेके स्किन प्रॉब्लम हर चीज के लिए
2: इवन मेंटली
4: इसको उतना लिटरली ना लिया जाए मतलब ये परंपराएं हैं
0: और नहीं और बहुत आप अगर इसको अदर वर्ड में नहीं लें तो बहुत सोचने वाली चीजें हैं
3: क्योंकि आप अगर वैसे बोलो कि मैं समझता हूं कि ये होना चाहिए इसलिए होना चाहिए कि कल को जो शरीर भी एक आपका बहुत बड़ा पार्ट है शादी में आपको उस भावनाएं ये सब होती हैं लेकिन अगर मालूम पड़ा कि नहीं है कंपेटेबल फॉर वट एवर रीजन तो ये मालूम तो हो गया कम से कम
4: नहीं नहीं आप सही कह रहे हैं
3: में सरप्राइज होना मैं समझता हूँ कि अब जैसे आजकल काफ़ी ऐसी बीमारियाँ जिसके जैसे HIV किस्म का होता है तो लोगों को मालूम दे शुड हैव आज की डेट में जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते हैं वो जब शादी करते हैं तो लड़की का देखते हैं कि जैसे जब प्रिंस चार्ल्स की शादी हुई थी मैंने सुना है कि उस समय डायना का कुछ चेक कराए गए थे जैसे बच्चे होंगे
4: नहीं
3: तो
4: वो सब सही कह रहे हैं लेकिन समय के साथ साथ आज के आधुनिक युग में ऐसा तो ये भी गलत हुआ कि आप शादी के मंडप पे कुछ आपको आपने कोई परीक्षा टेस्ट फेल कर गए और वहां से बारात लौट गई तो वो भी व्यवहारिक नहीं होता है तो
3: बहुत डरे हुए लग रहे हो
2: मेनली मुझे लगता है
4: मैं जितना डरा हुआ हूँ सोचिए कि एक लड़की का बाप कितना डरा रहता होगा उस टाइम कि अगर शादी है और बारात लौट गई तो व्यवहारिकता और परंपराएं और विधियां इन सब के बीच एक बैलेंस सामंजस्य बना के चला जाता है ताकि मिथिला का कल्चर भी प्रिजर्व रहे और सामाजिक कोई दुविधा भी ना हो
1: बहुत सुंदर बात कह ली आपने और
2: मेनली मुझे जो लगता है कि आज के कॉन्टेक्स्ट में तो ये एक डिफरेंट एंगल से है बट उस टाइम पे अगर हम बात करें जिस टाइम से हम लोग इस चीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं तो उस टाइम के हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज़ थी क्योंकि अब हाँ ना कोई फोटो ना कुछ तो उस टाइम पे तो आपके पास सीधा एक आप अपनी बेटी को जिसके साथ ब्याह रहे हैं तो सीधा एक स्ट्रेंजर है वो आपके लिए जो लोगों ने बताया और तब इतना बाराती कल्चर ये सब नहीं 10-20 लोग इस तरह से लोग लेकर जाते थे
1: भगवान के बाराती पे भी आएंगे अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं तो, और मैं थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए मैं आप लोगों को रोक रहा हूं तो यहां पर ये जो अहिल्या स्थान के विषय में आपने बताया जहाँ पर गौतम ऋषि का आश्रम था और अहिल्या को गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया था कि इंद्र भगवान ने छल के साथ अहिल्या के साथ संभोग किया और उसके कारण गौतम ऋषि जी क्रुद्ध हो गए कि तुम्हें इंद्र जी ने अपना स्वरूप गौतम ऋषि का ले लिया था और इस प्रकार वो समझ नहीं पाई जिससे गौतम जी क्रुद्ध होकर उसे श्राप दे दिया कि तुम किस प्रकार की पत्थर की बनी हुई हो जो तुम्हें समझ में नहीं आता है कि कौन तुम्हारे साथ है कौन तुम्हारे साथ नहीं है और उसी क्षण वो पत्थर की बन गई। फिर उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में श्री राम आएंगे और उनसे ही तुम्हारा उद्धार होगा। तो आज भी अहिल्या का स्थान हमारे मिथिला में बहुत प्रचलित है और यहाँ पर जो लोग जिनके कुछ स्किन प्रॉब्लम है वो लोग जाते हैं और वहाँ पे कुछ चढ़ावा चढ़ता है जिससे ये मान्यता
0: है का चढ़ावा चढ़ता है
1: और उससे फ़ायदा भी होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जब हम अहिल्या स्थान के बाद श्री राम का चरण मिथिला में पड़ता है और वहाँ से मिथिला की कहानी शुरू होती है। तो आप कुछ
0: तो अहिल्या स्थान ऑलरेडी मिथिला में है। छोटा गांव जो है वो मधुबनी साइड में पड़ता है। तो अहिल्या स्थान मिथिला में है और वहाँ से मतलब लोग जो हैं मतलब वहाँ से राम भगवान आगे बढ़े जनकपुर के लिए। तो वो अभी भी है और बहुत क्लोज़ है जनकपुर से। अगर आप जाएं तो बाय रोड आप वो रास्ता जो है ना हम मुझे लग रहा है एक हाफ एन आवर का रास्ता है बाय कार जनकपुर पहुंचने के लिए।
1: और तो जिस समय की आप बात कर रही हैं वहाँ पर जब उन्होंने ये वहाँ से निकले अहिल्या स्थान से निकले और जनकपुर पहुँचे तो लक्ष्मण जी को जनकपुर देखने की एक हृदय में लालसा हुई। लखन हृदय लालसा विशेषी जाए जनकपुर आई देखी नाथ लखन पुर देखन चाही प्रभु संकोच डर प्रगट न कहें। लक्ष्मण जनकपुर जाना चाहते थे लेकिन श्री राम की इच्छा और महर्षि विश्वामित्र को सामने पाकर थोड़ा संकोच कर रहे थे कि कैसे बताऊं कैसे उन्हें बताऊं। तो जब ये आगे चले तो फिर वहाँ पे अगली सुबह गुरु पूजा के लिए फूल लेने की अनुमति के लिए जब दोनों भाई राजा जनक की पुष्प वाटिका पहुँचे क्योंकि एक दिन पहले लक्ष्मण जी थोड़ा ये थे जाना चाहते थे लेकिन वो बोल नहीं पाए थे। अगली सुबह फूल लेने के लिए जब वो पहुँचे जनक वाटिका में और वहाँ पर वह कहानी बनती है। आप बताना चाहेंगी
0: वहाँ पे वो पहली बार सीता जी से मिले क्योंकि सीता जी भी अपने दोस्तों और बहनों के साथ सखियों के साथ आई थी फूल लेने के लिए। तो राम भगवान सीता जी से मिले थे वहाँ पे।
2: तो सीता जी मेनली गौरी पूजा के लिए फूल लेने के लिए वहाँ पे आई थी और पहली बार उन लोगों की मुलाकात वहीं पुष्प वाटिका में हुई। और इससे मुझे एक और बहुत सुंदर एक गीत के दो पंक्तियाँ याद आ रही हैं। राम को देखकर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। तो उसके बाद यहाँ से प्रसंग स्टार्ट हो कि पहली बार वो लोग कैसे मिले। और कहते हैं कि गौरी पूजा के बाद में गौरी जी ने सीता जी को क्या कहते हैं ये वरदान दिया कि आप जिसे अपना पति के रूप में चाहती हैं वो आपको अवश्य मिलेंगे। और जब ये स्वयंवर की तरफ आगे का प्रसंग बढ़ता है तो राम जी ने अपना जो बल पराक्रम जो है वो एक बार में जब वो शिव धनुष को चढ़ाने लगे तो शिव धनुष टूट गया। और इसी के साथ उन्होंने क्योंकि स्वयंवर की शर्त ही ये थी कि जो शिव धनुष को उठाएंगे चढ़ाएंगे उन्हीं के साथ सीता जी ब्याही जाएंगी। तो जो सीता जी ने पहली नज़र में राम जी को देख के गौरी माँ से मांगा था उन्हें वो भी मिला। और सीता राम यहाँ से मैं कहूँगी कि राम जी जो हैं वो सिर्फ राम जी नहीं रहे वो सियावर राम बन गए।
0: और एक चीज़ मैं ऐड करूँगी कि गौरी पूजा आज भी होती है। जितनी भी मिथिला की जो मैथिलानी है उनको वो कनेक्ट करती होंगी मुझसे कि हम आज भी सुबह सुबह उठ के जब नहा के पहला पूजा करते हैं तो हम सबसे पहला पूजा जो हम गौरी पूजा करते ही हैं गौरी को हम सिंदूर चढ़ाते ही हैं और फिर वो सिंदूर मंत्र के साथ वो हम सबको ही पता होगा क्योंकि और गौरी पूजा इंटरेस्टिंग इसलिए भी है कि ये शादी के बाद नहीं स्टार्ट करते। ये जब दूल्हा जब जो भी आपके राम जी हैं वो जब आपके द्वार पर आ जाते हैं गौरी पूजा उस वक्त से स्टार्ट हो जाती है।
1: तो बहुत ही सुंदर है। और अभी क्योंकि अब राम भगवान मिथिला में प्रवेश कर चुके हैं तो आइए कि मिथिला नगर किस प्रकार का था उस पर एक गाना सुनते हैं।

0: ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि मिथिला की शादी अभी भी राम और सीता की शादी की परंपरा को निर्वाह कर रही है कुछ और इसके विषय में बताना चाहेंगे आप
1: तो जैसे हमने बोला कि वो ट्रेडिशन अभी तक फॉलो हो रहा है जैसे गौरी पूजा का ही है तो जिस दिन शादी होती है जो फर्स्ट गौरी पूजा होती है तो उसमें जो पति होता है वो अभी भी पीछे बैठता है और वो फूल हो गया प्रसाद हो गया जो भी माता गौरी को अर्पण किया जाता है वो सब कुछ पति देता है और फिर जो पत्नी है उसे चढ़ाती है और इसके साथ साथ मतलब बहुत और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं जैसे पति जो है वो पत्नी के बाल बांधता है जो एक अलग मतलब इन उन लोगों की आपस में बॉन्डिंग को बढ़ाने के लिए बहुत छोटे छोटे चीज़ें जो हैं वो मिथिला की ट्रेडिशन में हैं और आप
2: अगर आप मिथिला की शादी देखें वो चार दिन चलती है शादी जो है दो बार होती है और वो फोर डेज की शादी होती है तो एक बार तो और दुल्हन कभी भी मंडप में खुद नहीं आती या उनके घर वाले नहीं लेके आते मिथिला की दुल्हन को लाने के लिए जो है ना राम भगवान को सीता जी को लाने के लिए खुद जाना पड़ा था उनको उनके घर वाले लेके नहीं आए थे तो अभी भी मिथिला में ये कल्चर है कि दुल्हन जो होती हैं वो बैठी होती हैं और अगर मैं आज कल जेंजी के लैंग्वेज में बोलूँ तो एक छोटा सा टेस्ट होता है एक फोक सॉन्ग होता है जो वहाँ की एक लेडी गाती हैं और ऐसा नहीं है अनफेयर नहीं होता है अभी भी जब दूल्हा आता है तो उनके लिए एक लेडी लड़की वालों की तरफ से ही असाइन होती हैं जो उनको हेल्प करती हैं इन सारे रिचुअल्स में इट्स नॉट लाइक कि उनको अकेला छोड़ दिया जाता
1: उन्हें
2: है
1: आप असिस्टेंट इंग्लिश में बोलेंगे तो कह सकते हैं हम मैथिली में बोलते हैं बिदकौरी
2: हाँ मैथिली में जो सभी बोलते हैं
1: जितने भी वो रिचुअल्स होंगे उनमें दूल्हे को असिस्ट करेंगी ताकि उसे ये ना फील हो लोनली फील ना हो कि अरे मैं एक अलग टेरिटरी में आ गया हूँ
3: की बजाई भी है वो पहली बार करने जा रहा है उसको क्या मालूम क्या करना
1: इसीलिए उसको हाँ, पूरा डिस्क्रिप्शन
2: नहीं नहीं ये नहीं है शादी से पहले लड़कों को ट्रेन किया जाता है घर में भाभियाँ और जो भी घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको बताते हैं पर चूंकि थोड़ा थोड़ा कल्चर हर जगह होता है डिफरेंट तो ये मिथिला में है कि अभी भी शादी में जो है ना शादी चार दिन की होती है और चौथे दिन फिर से शादी होती है तो जब चौथे दिन की शादी होती है हम उसके बाद और चार दिन तक अभी भी मिथिला में लड़के लड़की को भगवान माना जाता है तो उस चार दिन वो किसी के पैर नहीं छूते किसी के भी पैर नहीं छूते चौथे दिन वो छूते हैं जब
0: मुझे लग रहा है कि ये इतना एलाबोरेट है कि इस पर एक प्रोग्राम अलग से करना पड़ेगा
3: इसके ऊपर जो है ना मैं काफ़ी खुद उत्सुक हो गया हूँ कि इसको कैसे जाना जाए और मैं सोचता हूँ कि दोबारा से मैं शादी करूँ अब इसी रीति रिवाज से
1: मोस्टली कल
0: ध्यान रखिएगा यतीन जी वहाँ पर परीक्षाएं भी होती हैं
1: और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है मोस्टली अगर आप देखेंगे तो शादी जो है एक वो स्टेप बाय स्टेप चलती है ज़्यादातर हल्दी हुआ मेहंदी तिलक इस तरह से ज़्यादातर रीजन्स में चलती है बट और उसके बाद शादी हो गई फिर रिसेप्शन एंड उसके बाद हम मानते हैं कि शादी कंप्लीट हो गई बट मिथिला में क्या है कि शादी के दिन से जो स्टार्ट होती है तो वो पूरे एक साल तक चलती है मतलब आप सोचिए एक साल तक चल रही है एक साल में इतने तीज त्योहार आएंगे जैसे हम लोग
2: कुजगरा
1: हो गया मधुश्रावणी हो गया अभी सावन जो पहला सावन होगा कपल का तो उसमें मधुश्रावणी मनाई जाएगी जिसमें वो लोग क्या कहते हैं नेचर को माता गौरी को शिव जी को और यहाँ तक कि हम बोलते हैं नाग नागिन दैट इज स्नेक्स उनको वर्शिप करते हैं क्योंकि सावन का महीना उनका एक तरह से होता है कि वो लोग निकलते हैं बाहर तो उन लोगों को भी
0: नहीं और ये सच में इतना इतना रिच कल्चर है मिथिला का और
2: मुझे याद है
0: हमरा सबके अई बात पर काफ़ी गर्व है जब हम सब मिथिला से छी और मिथिला एतो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हम सब प्रयास कर रहा छे तब मिथिला बनाबा के मिथिला से दूर मिथिला बनाबा के वही प्रक्रम में अपना सबके एक प्रोग्राम आवे वाला है मिथिला महोत्सव 2026 जतय माता भगवती के पदार्पण भ रहा छन माँ दुर्गा के पदार्पण भ रहा छन 17, 18, 19 अक्टूबर क्वेकर हिल्स कम्युनिटी सेंटर आप अपने डायरी में नोट कर लें 17, 18, 19 क्वेकर हिल्स कम्युनिटी सेंटर मिथिला महोत्सव 2026 और दुर्गा पूजा ये साथ में होने वाला है उसमें आपको मिथिला के छोटी बड़ी सभी प्रकार के जो संस्कृति है कला है भाषा है इससे आप परिचित हो सकते हैं अभी हमारे पास समय का अभाव हो रहा है और हो सकता है कि हम इसका नेक्स्ट पार्ट आपको अगले एपिसोड में सुनाएं, लेकिन अभी के लिए जो आज हमने सीखा वो ये है कि श्री राम तब बने और श्री राम सियापति राम सियावर राम तब बने जब वो मिथिला पहुँचे, और उसमें माता सीता का त्याग जो है और माता सीता की जो करुणा है उसमें सम्मिलित है। तो श्री राम मात्र श्री राम नहीं रह गए, वो सियापति राम बन गए, सियावर राम बन गए। और जो उनकी गुरु की यात्रा थी उन्होंने श्री राम को श्री राम बनाया। आइए हम आपको छोड़े जा रहे हैं एक और गीत के साथ, और फिर आप सभी से हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे फिर से मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ या फिर इसी रामायण के पार्ट टू के साथ।

0: Radio 2098.5 FM Community Program
1: Samajik Hindi Karyakram Darpan Akashvani 2098.5 FM
0: Welcome to the Hindi Show featuring news, interviews, music and community announcements.
1: स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में आप सुनेंगे समाचार विचार संगीत और सामाजिक सूचनाएं
0: रेडियो 2098.5 FM मल्टीकल्चरल रेडियो

0: आज रविवार युगाब्द 5126 कलयुग विक्रम संवत 2083 श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी 23 अगस्त 2026 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को संजीव शर्मा और प्रदीप उपाध्याय का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। वंदे मातरम पर शर्मिला टैगोर की टिप्पणी से भड़की कंगना रनौत। तुकाराम मुंडे, 21 साल में 25 तबादले के बावजूद नहीं बदली कार्यशैली, जाने क्यों चर्चा में है सिंघम आईएएस। वंदे मातरम पर कांग्रेस का बड़ा फैसला, पार्टी कार्यक्रमों में गाए जाएंगे सिर्फ पहले दो अंतरे। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा, मोदी सरकार ने इसे सेफ बनाया, बोले अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर। राम मंदिर के नाम पर बिक रही मिठाई पर सीसीपीए सख्त, अमेजॉन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के 10 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। सत्येंद्र जैन को एसीबी ने किया गिरफ्तार, एएपी का दावा, जानिए किस घोटाले में हुई कार्रवाई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, एसआईटी जांच रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट। अब सुनिए समाचार विस्तार से। एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर की वंदे मातरम पर टिप्पणी पर भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने कड़ी नाराजगी जताई है। शर्मिला टैगोर ने कहा था कि वंदे मातरम के कुछ हिस्से एक ईश्वर को मानने वाले लोगों की आस्था से मेल नहीं खा सकते। उन्होंने कहा कि गीत में कई देवताओं का जिक्र है। कंगना ने लिखा, मैं खुश हूं कि शर्मिला जी ने वंदे मातरम को लेकर अपनी आपत्ति के बारे में बात की, लेकिन एक कलाकार के तौर पर मैं हैरान हूं कि कला और कविता को लेकर उनकी सोच इतनी छोटी और बनावटी कैसे हो सकती है। भाजपा सांसद ने आगे लिखा कि किसी भी कविता या गीत में शब्द रूपक होते हैं। कवि या कलाकार मनचाहा असर पैदा करने के लिए हर तरह की कल्पना करता है और असंभव लगने वाली समानताएं खींचता है। कृपया हिंदू मुस्लिम सोच से बाहर आइए। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी तुकाराम मुंडे एक बार फिर अपनी सख्त प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर चर्चा में हैं। महाराष्ट्र कैडर के 2005 बैच के आईएएस अधिकारी मुंडे को नियमों का कड़ाई से पालन कराने और भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए जाना जाता है। उनके करियर में 21 साल में 25 तबादले भी चर्चा का विषय रहे हैं। मई 2026 में महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर की जिम्मेदारी संभालने के बाद मुंडे ने मिलावटखोरी और खाद्य सुरक्षा के खिलाफ कार्रवाई तेज की। दूध पनीर में मिलावट से लेकर खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन, प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों और क्विक कॉमर्स स्टोर्स तक के खिलाफ जाँच और कार्रवाई की गई। कई प्रतिष्ठानों पर छापेमारी हुई, कुछ को बंद किया गया और कई को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। मुंडे का कहना है कि जब तक राज्य में लोगों को सुरक्षित भोजन और दवाएं सुनिश्चित नहीं हो जाती, तब तक वह कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे। वंदे मातरम को लेकर जारी सियासी विवाद के बीच कांग्रेस कार्य समिति ने बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि वह 1937 में पारित अपने प्रस्ताव पर कायम रहेगी। इसके तहत अब पार्टी के सभी कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के केवल पहले दो अंतरे ही गाए जाएंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि उस समय महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रवींद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल समेत कांग्रेस के शीर्ष नेता मौजूद थे। पार्टी ने उस समय जो निर्णय लिया था, कांग्रेस कार्यकर्ता उसी का पालन करेंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या पार्टी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सिर्फ दो अंतरे गाए जाएंगे, वेणुगोपाल ने जवाब दिया, हाँ, पहले दो अंतरे। अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर अपने पहले कश्मीर दौरे पर श्रीनगर पहुंचे और वहां के बदलते सुरक्षा माहौल की जमकर तारीफ की। उन्होंने कश्मीर को भारत का एक अहम हिस्सा माना और कहा कि मोदी सरकार ने इसे पहले से कहीं ज़्यादा सुरक्षित बना दिया है। गोर ने बताया कि वॉशिंगटन जल्द ही अपने नागरिकों के लिए जारी नेगेटिव ट्रैवल एडवाइजरी की समीक्षा करने वाला है। उन्होंने कहा कि वह पहली बार कश्मीर आए हैं और यहाँ की सुंदरता को देखकर हैरान हैं। गौर ने कहा कि क्षेत्र अब काफ़ी सुरक्षित हो चुका है और बड़ी संख्या में अमेरिकी नागरिक यहाँ आकर इसकी खूबसूरती का अनुभव जरूर करना चाहेंगे। अयोध्या के श्रीराम मंदिर के नाम पर ऑनलाइन मिठाइयां बेचने के मामले में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA ने अमेजॉन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने इसे भ्रामक विज्ञापन और उपभोक्ताओं की धार्मिक भावनाओं के व्यावसायिक इस्तेमाल का मामला माना। मामला तब सामने आया जब श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद नाम से व्यावसायिक रूप से तैयार मिठाइयां अमेजॉन पर बिक्री के लिए उपलब्ध थीं। CCPA ने कहा कि इस नाम का भक्तों के बीच एक स्पष्ट अर्थ है। अयोध्या के राम मंदिर में भगवान को अर्पित और आशीर्वाद प्राप्त प्रसाद। ऐसे में बिना मंदिर या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अनुमति के सामान्य मिठाइयों को इस नाम से बेचना भ्रामक है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के ठिकानों पर ईडी की छापामारी जारी है। ईडी की ये छापामारी जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में काले धन के इस्तेमाल को लेकर दर्ज मामले में कार्रवाई से संबंधित है। आजम खान के रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली सहित कुल 10 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई जारी है। यह जांच सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के फंड को प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए दूसरी जगह लगाने और बाद में उनके इस्तेमाल से जुड़ी है। इस तलाशी का मकसद अपराध से हुई कमाई, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, दस्तावेज और डिजिटल सबूतों का पता लगाना है जो सरकारी फंड को दूसरी जगह लगाने और उनके इस्तेमाल से जुड़े हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने गिरफ्तार किया है। जल बोर्ड घोटाले मामले में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व CEO उदित प्रकाश राय, पूर्व संविदा सलाहकार अंकित श्रीवास्तव और 3 निजी व्यक्ति नारगेंद्र यादव, राजा कुमार कुर्रा और पंकज वर्मा शामिल हैं। अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि मंदिर के दान व चढ़ावे में हुई कथित गड़बड़ी और चोरी के मामले में विशेष जांच टीम ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और पूर्व सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा को बड़ी राहत दी है। SIT द्वारा उत्तर प्रदेश शासन को सौंपी गई अंतिम जांच रिपोर्ट में दोनों प्रमुख पदाधिकारियों को क्लीन चिट मिल गई है और रिपोर्ट में किसी भी अनियमितताओं में उनकी संलिप्तता का कोई जिक्र नहीं है। जून माह में मंदिर के दान प्रबंधन और कैश काउंटिंग रूम से चढ़ावे की चोरी के आरोप सामने आए थे, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में जमकर बयानबाजी शुरू हो गई थी। विवाद गहराने और निष्पक्ष जांच की मांग के बीच चंपत राय और अनिल मिश्रा ने 27 जून को ट्रस्ट के अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। पूछताछ के दौरान चंपत राय ने स्पष्ट किया था कि उन्होंने स्वयं गड़बड़ी का पता चलते ही कार्रवाई की पहल की थी और शिकायत दर्ज कराई थी। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 1,63,090 रुपये प्रति 10 ग्राम था और US डॉलर की विनिमय दर थी 95.70 रुपये और ऑस्ट्रेलियन डॉलर की 68.41 रुपये। इसी के साथ इस सप्ताह के समाचार समाप्त होते हैं।
1: दर्पण के सभी श्रोताओं को प्रदीप उपाध्याय का नमस्कार। संजीव जी उम्मीद है कि सिडनी की थोड़ी सी कम ठंडी सुबह हमारे श्रोता रेडियो ऑन कर चुके होंगे जैसा कि हम सभी जानते हैं कार्यक्रम पूरे दो घंटे का है इसलिए मेरी छोटी सी सलाह है एक नहीं दो प्याली चाय साथ रखिए ताकि चाय भी चलती रहे और हमारा रेडियो भी आज की प्रस्तुति में ताज़ा खबरों के अलावा करंट अफेयर्स पर खुली बातचीत होगी कम्युनिटी अनाउंसमेंट भी होंगे और पिछले वित्त वर्ष के शेयर बाजार का आसान विश्लेषण भी कहाँ रही तेजी कहाँ आई नरमी और आम निवेशक के लिए इसका क्या अर्थ है और आज हमारे साथ विशेष अतिथि उद्घोषक यतीन जी भी हैं यतीन जी का मतलब है फुल फाइनेंशियल प्लानिंग विद कॉन्फिडेंस
2: फाइनेंशियल प्लानिंग का श्रोता नमस्कार यतीन्द्र गुप्ता इसमें टैक्स वाला ज़्यादा हम बात करेंगे क्योंकि काफ़ी भूचाल आया हुआ है इस समय
1: तो ठीक है यतीन जी आज हमारे साथ पूरे रेडियो कार्यक्रम के दौरान रहेंगे
3: जी
1: तो अतः टैक्स मनी या मनी मैटर्स से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो कार्यक्रम के दौरान भेजिए हाँ। यतीन जी सरल भाषा में आपके सवालों का जवाब देंगे और हाँ आज सिर्फ सुनना ही नहीं जीतना भी है पूरे कार्यक्रम में आपकी सहभागिता के लिए आकर्षक पुरस्कार भी रखे गए हैं इसलिए ध्यान से सुनिए हमारे सवालों का जवाब दीजिए और कार्यक्रम का हिस्सा बनिए तो तैयार हो जाइए रेडियो की वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए चाय की चुस्की लीजिए और दर्पण के सुहाने सफ़र में हमारे साथ चलिए शुरुआत करते हैं आज के एक प्रेरक विचार से जो कि संजीव जी सुनाएंगे और उसके बाद सुनाएंगे एक सुंदर सा भजन गीत गोविंद उसकी भी संक्षिप्त जानकारी संजीव जी प्रदान करेंगे
0: तो सफलता का रास्ता कोई बना बनाया हाईवे नहीं है यह रोज की छोटी छोटी सही आदतों और कोशिशों से खुद बनाना पड़ता है मतलब हम अक्सर सोचते हैं कि किसी दिन बड़ा चमत्कार होगा और किस्मत बदल जाएगी लेकिन असलियत यह है कि हर दिन उठकर अपने काम के प्रति ईमानदारी दिखाना थोड़ी सी मेहनत बढ़ाना और अपनी गलतियों से सीखना ही अंत में बड़ी कामयाबी बनता है अपनी आज की छोटी छोटी कोशिशों को कम मत आंकिए वही आपको कल आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी
2: क्या बात है संदीप जी प्रैक्टिकल तो, आपने बता दिया है
0: तो चलिए आज का भजन जो है ये गीत गोविंद जो है हम लोग बहुत सुनते आए थे और उसके बारे में हम थोड़ा और भी बताएंगे आपको ये जयदेव जी द्वारा लिखा गया था और ये जो आज की प्रस्तुति है ये इंद्रेश उपाध्याय जी ने गाई है

0: शिव गोविंद केवल एक प्रेम काव्य नहीं बल्कि यह संस्कृत साहित्य दर्शन शास्त्रीय संगीत और भारतीय नृत्य कला का एक ऐसा अनोखा संगम है जिसने पिछले 800 सालों से भारतीय संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया है तो ये जो काव्य है ये जयदेव जी ने लिखा था और इसको अष्टपदी परंपरा के अनुरूप पूरे ग्रंथ में 24 मुख्य गीत हैं और हर गीत 8 पंक्तियों या पदों का है इसलिए इन्हें अष्टपदी कहा गया है राग और ताल का भी इसमें बहुत ध्यान रखा गया है तो जयदेव जी ने ना केवल कविता लिखी बल्कि हर अष्टपदी के ऊपर स्पष्ट रूप से लिखा है कि इसे किस राग जैसे मालव भैरवी बसंत और किस ताल में गाया जाना चाहिए तो श्रोताओं आपसे मेरा निवेदन होगा कि इसको आप जरूर सुनें ये तो संस्कृत में था तो शायद उतना हम लोग अब नहीं बोल पाते हैं समझ पाते हैं लेकिन आप अगर इसको सुनेंगे YouTube पे विद मीनिंग तो मैं
1: सुंदर जानकारी देने के लिए संजीव जी हाँ मुझे नहीं मालूम था 800 साल पुराना
0: संस्कृत में और कहते हैं कि इसकी जो आखिरी के कुछ पद थे वो श्री कृष्ण जी ने खुद आके लिखे
1: तो चलिए आशा करते हैं श्रोताओं ने इस भजन का आनंद लिया होगा और उसके साथ थोड़ी जुड़ी हुई जानकारी भी तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि हमने कार्यक्रम के आरंभ में बताया था आज हमारे साथ यतीन जी हैं और आज का बिल्कुल कार्यक्रम जो है वो टैक्स रिलेटेड होने वाला है तो हम सारे श्रोताओं को एक बार फिर जो देर से जुड़े हैं उनको बताना चाहूँगा कि आपकी कोई भी आपकी शंका हो टैक्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं कोई भी कैपिटल गेन और बहुत सारी चीज़ें जो भी विषय चाहें आप हमको लिख सकते
2: कुछ
1: हैं
2: पूछिए
1: हाँ और यतीन जी को आप डायरेक्ट अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े हैं तो वहाँ पर पब्लिश करिए ताकि और श्रोता भी उसको समझ सकें और यदि आप नहीं हैं सिर्फ एयर पर सुन रहे हैं तो यतीन जी को डायरेक्ट आप SMS कर सकते हैं और आपकी क्वेरी को हम लोग आंसर करेंगे चाहे तो हमसे डायरेक्ट जुड़ भी सकते हैं ऑन एयर आपसे बात कर सकते हैं हम लोग ताकि और लोग भी उससे लाभान्वित हो सकें
2: तो फ़ोन नंबर दीजिएगा फिर
1: यतीन जी आप अपना फ़ोन नंबर दीजिए फिर श्रोताओं के लिए
2: जी मैं बिल्कुल देता हूँ 0421-590-791 0421-590-791 गो फॉर दैट
1: तो चलिए एक गाना सुनेंगे और उससे पहले बताइए कि जैसे 26 का टैक्स तो इस समय लोग भर रहे हैं
2: जी जी
1: तो कुछ एक मोटा मोटी एक आम आदमी के लिए कुछ क्या क्या टैक्सेशन में कुछ परिवर्तन हुए हैं क्या इस साल
2: जो अगले साल से परिवर्तन वो काफ़ी ज़्यादा है
1: अच्छा
2: हाँ वो उसमें एक आपने सुना होगा कि अब $1,000 की डिडक्शन आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगी बहुत बड़ा परिवर्तन मैं अभी स्मॉल लेवल की बात कर रहा हूँ जो अपने आई रिटर्न करते
1: हैं श्रोता
2: हम वो हम बात करेंगे लेकिन क्यों ना हम पहले जो पुरस्कार हैं वो भी तो बात कर लें
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल श्रोता हो हाँ आज जो है आज का कार्यक्रम सहभागिता करने का एक और भी कारण है कि आप लोगों को हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं आज हमारे पास कई इनाम है तो जो भी श्रोता हमसे
2: सेवन तो हाँ तो सात लोग
1: तो हाँ तो आप पार्टिसिपेट करिए आप हमको किसी भी तरीके से चाहे व्हाट्सएप ग्रुप पर करिए चाहे हमको अपना संदेश भेजकर करिए और अगर आप ऑन एयर आना चाहते हैं तो आप हमको लिखिए हम आपको फ़ोन के माध्यम से जोड़ेंगे ताकि आपकी बात को और लोग भी सुन सकें और उसके साथ आपको मिलेगा पुरस्कार तो बिल्कुल आपका चाय की चुस्कियों के साथ साथ कार्यक्रम का आनंद लीजिए तो जरा क्या क्या पुरस्कार हैं यतीन जी जरा ये भी बताइए
2: तो एक तो पुरस्कार है बंटवारा फिल्म का आई नो बंटवारा फिल्म आ चुकी है और तो उसमें एक पास है जिसमें दो लोग जा सकते हैं
3: क्या बात है
2: ठीक है तो दूसरा है कि हमारे जो केदारनाथ जी हैं उनका एक प्रोग्राम है म्यूजिकल प्रोग्राम है इसका नाम है सुहाना सफ़र
3: वाह
2: और उसके 5 टिकट मिलेंगे और ये 27 अगस्त को है तो अगले वीक
1: अगले हफ्ते ही है तो
2: 5 लोग उसमें जाएंगे तो 5 उसमें एक आदमी को एक पास
1: बिल्कुल तो
2: और एक और हम वो दर्पण की तरफ से कर रहे हैं एक नई फिल्म आई है हनुमान अंश ये नीम करौली बाबा के ऊपर है। तो इसकी फिल्म की जो निर्माता हैं प्रोड्यूसर हैं वो 21 साल की हैं।
1: वाओ
2: आप संजीव जी कहते हो कि जैन जी सारे क्या करते हैं लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि 21 और वो लड़की इंग्लैंड में पढ़ रही है।
1: अच्छा
2: और तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे तो हम उसका भी एक टिकट
1: और देंगे। ये जो नीब करौली बाबा हैं आप लोग को शायद पता ही होगा जैसे जो हमारे एप्पल के फाउंडर थे स्टीव जॉब्स ही वाज हिज डिसाइपल
2: और उनके कमरे उनका जो ऑफिस होता था उसमें नीम करौली बाबा का वो पोर्ट्रेट या फोटो काफी बड़ा मुझे आज मैं उनका सुन रहा था तो
1: और लेटेस्ट जो था वो जूलिया रॉबर्ट्स आप लोग को शायद पता होगा कि उन्होंने हिंदू धर्म को स्वीकारा है और सुनते हैं कि कहीं पे उन्होंने नीम करौली बाबा की ही फोटो देखी जिससे कुछ उनको हुआ और इतनी आकर्षित हुई कि फिर उन्होंने जाके और एक फिल्म आई थी लिव क्या लिव ईट एंड प्रे करके है ना तो वो कुछ कुछ उनकी ही कहानी भी थी उसमें।
2: अच्छा ऐसा है। अच्छा।
1: जी और फिर उन्होंने पूरा फैमिली के साथ शी कन्वर्टेड टू हिंदू और अभी वो प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं।
2: सोचता हूँ अगर आप लोग भी इसके बारे में कुछ हमें ज्ञान देना चाहें कि
1: जरूर लिखें
2: कि हाँ तो हम बताएं कि क्योंकि मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्री होंगी कहीं ना कहीं ऐसी फिल्म होगी
1: जी
2: कुछ ना कुछ तो हुआ होगा कि इनका वो सोचता हूँ थोड़ी सी ये आवाज़ आ रही है क्योंकि ये फायर का
1: शायद फायर अलार्म है। तो चलिए एक सुंदर सा एक रोमांटिक गीत से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं संजीव जी तो थोड़ा सा हम लोगों ने भक्ति के बाद अब थोड़ा रोमांस का संचार किया जाए हमारे कार्यक्रम में।

0: भाई साहब ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है
1: बहन जी करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है इसमें आनियन गार्लिक जिंजर टमाटर नमक मिर्च हल्दी धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है इट्स सो इजी इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au
2: तो श्रोताओं ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश
3: तो संजीव जी बड़ा सुंदर आपने गाना सुनवाया और मुझे तो वो कार्यक्रम पिछला जो हमने किया था वो आनंद बख्शी विशेष किया था और यह भी उन्हीं का लिखा हुआ फिल्म महबूब की मेहंदी जो कि सन 1971 में आई थी और ये राजेश खन्ना और लीना चंदावर द्वारा अभिनीत बहुत ही अच्छी पिक्चर थी तो उसका गाना आपने बिल्कुल आनंद बख्शी का
2: कॉमन मैन के रोमांस
3: हाँ हाँ मुझे एक्चुअली आपने जो उस रिपोर्ट में कहा था कि एक आम आदमी की भाषा का प्रयोग करके उन्होंने इतने कर्णप्रिय गीत जो है वो लिखे हैं तो बिल्कुल यह गाना उस कसौटी पे बिल्कुल खरा उतरता है
4: कॉमन मैन का रोमांस क्या होता है संजीव जी सॉरी
2: नहीं मतलब समझे नहीं बात आप जैसे आपको कुछ कहना है तो आप थोड़ी ना वो शायराना अंदाज में आप जो रोज के बोलने वाली भाषा में ही आप कुछ कहेंगे
4: हाँ अच्छा अच्छा तो वो कॉमन मैन का
2: मतलब लाइक शायरों वाला नहीं वो बट हाँ आप जैसे वो आज हमने गीत गोविंद जो बजाया है तो वो उसके लिए तो भाई वैसा लिखने के लिए तो बड़ा वो चाहिए तो
4: ऊपर कैसे कैसे हम अपने
2: हाँ इजहार करेंगे तो आप आनंद बख्शी को सुनिए
3: श्रोताओं से हम क्षमा चाहेंगे ये थोड़ा सा एक शायद फॉल्स अलार्म जो है फायर का यहाँ पे बज रहा है तो वो सुनाई दे रहा होगा उसके लिए हमको भी परेशान कर रहा है और इसको हम बंद नहीं कर सकते आशा करते हैं स्वतः ही बंद हो जाएगा लेकिन हाँ एक अच्छी बात यह है कि ये फॉल्स अलार्म है हमने अभी बाहर जाकर चेक कर लिया था तो इस असुविधा के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं तो चलिए एक और रोमांटिक गीत मैं लेके आया हूँ और ये संजीव जी का बड़ा प्रिय गीत है क्योंकि अक्सर जब भी मैं यतीन जी स्टूडियो के लिए आता हूँ तो मैंने देखा है संजीव जी एक गाना जो है कोई ना कोई गुनगुनाते हुए पूरी गाड़ी में जो है कार से आते हैं
2: है।
3: और ये वाला गाना मैंने कई बार गुनगुनाते हुए देखा है
2: रोमांटिक लोगों
3: में संजीव जी का प्रिय रोमांटिक गीत हम श्रोताओं के साथ साझा करते हैं

0: ये सुताओ ये ट्रेलर था बटवारा फिल्म का तो इसका एक पास एक जीतने वाले को मिलेगा और ये फिल्म कैसी रही अगर किसी ने देखी है तो हमारे साथ में शेयर करें कि आपको ये फिल्म कैसी लगी है इसके बाद में हम एक और ट्रेलर बजाएंगे संजीव जी जो हनुमान अंश का होगा
1: जी। तो चलिए तो श्रोताओं बिल्कुल आपके पास ये फिल्म देखने का मौका है इतना ट्रेलर तो मुझे काफ़ी एक्साइट कर रहा था और लगता है काफ़ी सारा एक्शन इमोशन सब कुछ इस फिल्म के अंदर है तो श्रोताओं आपके पास भी मौका है इस फिल्म को देखने का और हमारे साथ जुड़िए और प्रतिक्रिया दीजिए और एक विजेता को हम जो है वो दो टिकट इस फिल्म के देंगे और बिल्कुल इसी सप्ताह आप जाके पिक्चर देख सकते हैं तो चलिए थोड़ा विषयांतर करते हैं अब एक संजीव जी भारत में अभी कुछ एक न्यूज़ आई कि प्लास्टिक की करेंसी वहाँ पे जो है वो ट्रायल के लिए यूज़ करने वाले हैं और हम तो जब 40 साल पहले 35 साल पहले जब ऑस्ट्रेलिया आए थे तो हमने यहाँ प्लास्टिक की करेंसी देखी थी तो बड़ा एक एक्साइटमेंट था कि अच्छा यहाँ की करेंसी
2: बट हम लोग के सामने ही तो आई है या पहले से थी यहाँ पे
0: नहीं,
2: हमारे सामने ही
0: नहीं,
1: '88 में शुरू हो गई है टेक्निकली एक्चुअली एक रिपोर्ट हम प्ले करेंगे उसमें उन्होंने एक्चुअली प्लास्टिक की करेंसी का जो उद्गम है वो ऑस्ट्रेलिया से ही हुआ है 1966 में यहाँ पर कुछ फेक करेंसी बनाई गई थी और वो रिपोर्ट में उसकी स्टोरी बताई जाएगी एक भास्कर की रिपोर्ट हम लेके आए हैं श्रोताओं अच्छा, के लिए तो फिर सरकार ने थोड़ा कि भैया नकली करेंसी को कैसे रोका जाए तो फिर वैज्ञानिकों को एक दिया गया प्रोजेक्ट कि भाई क्या बताइए तो फिर उन्होंने इस तरीके की करेंसी बनाई लेकिन यदीन जी अब मेरी संजीव जी से कल इस विषय पर बात हो रही थी तो संजीव जी खुद बता रहे थे कि प्लास्टिक की करेंसी भी जो है काउंटरफिट हो जाती है
2: इस समय इतना इतने फेक 100 और 50 डॉलर के नोट हैं कि
0: बहुत ज्यादा अभी ऑस्ट्रेलिया में चल रहे हैं आज की डेट पे
1: जबकि एक्चुअली देख के उतना होलोग्राम और इतना वो होता मुझे लगता नहीं कि आसानी से इसको कोई कॉपी कर सकता है
2: एक्चुअली दो तरीके के हैं एक तो एग्जैक्ट कॉपी है उसको मुश्किल से एक है आप देखेंगे आपको देख के लगेगा कि नहीं यार ये नकली है
1: अच्छा
2: हाँ तो दो टाइम क्योंकि मेरे को 3 बार मिले हैं
0: अच्छा
2: मंदिर में डोनेशन में आए
1: भगवान को भी धोखा है देते हैं भगवान को धोखा इंसान को क्या छोड़ेंगे
2: तो जो बैंक की जो काउंटिंग मशीन होती है
0: वो रिजेक्ट कर देती है हाँ।
2: वैसे आंखों से आपको नहीं पता चलेगा बट वो इतना माइन्यूटली व्हेन इट काउंट्स वो नोट को इतना माइन्यूटली स्कैन करती है कि उसको और फिर वो लोग जब्त कर लेते हैं देन यू वोंट गेट इट बैक
0: अच्छा अच्छा ऐसे
2: हाँ तो फिर वो पुलिस को भेजी जाती है बट अच्छा ये हुआ कि मुझसे नहीं पूछा गया कि भाई तुम्हारे पास कहाँ से है बट यू राइट कि कहाँ मिली क्या था शॉर्ट
0: वो आपने लिखा
2: हाँ
0: अच्छा
2: और फिर वो लोग पुलिस को भेज देते हैं
0: अच्छा
1: तो मुझे तो थोड़ा ये समाचार सुन के आज क्योंकि भारत में जब ये करेंसी का ट्रायल हो रहा था तो मैं तो बड़ा उत्साहित था कि चलो एक क्योंकि भारत में ये समस्या काफ़ी हद तक वहाँ तो इवन पाकिस्तान से प्रिंट होके बिल्कुल जेन्युइन लगते थे इस तरीके के आए हैं
2: सुना है
1: मतलब आपका धुरंधर में पूरा इसका जो है वो दिखाया गया है पता नहीं कितनी सत्यता है उसमें तो चलिए एक श्रोताओं की जानकारी के लिए जिसमें एक प्लास्टिक करेंसी का इतिहास और भारत में इसको कैसे चलाया जाएगा उस पर एक छोटी सी रिपोर्ट लेकर
2: बट एक चीज तो पक्का है कि इट लास्ट मच मच लॉन्गर देन
1: हाँ हाँ एक्चुअली जो कॉस्ट ऑफ करेंसी बोलते हैं कि जैसे एक कागज का नोट करते हैं उसकी आयु 4 साल या 5 साल होती है ये उससे अधिक चले भले इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा होती है बट पर ईयर कॉस्ट अगर निकालेंगे तो ये सस्ता सौदा है ये तो कहा जाता है बिल्कुल
3: अब प्लास्टिक की करेंसी आने वाली है ये नोट कैसे होंगे सरकार इस दिशा में क्यों तेजी से कोशिश कर रही है इन सवालों के जवाब जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में नमस्ते मैं हूं आदित्य ये विषय इसलिए जरूरी है क्योंकि 27 जुलाई को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि प्लास्टिक नोट के फील्ड ट्रायल की मंजूरी मिल चुकी है बाजार में 3,000 करोड़ की कीमत के 200 करोड़ नोट लाने की योजना है चलिए अब आपके हर सवाल के जवाब पर चलते हैं पहली बार प्लास्टिक नोट का आइडिया आया एक क्राइम से साल 1966 में ऑस्ट्रेलिया ने नई करेंसी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर लॉन्च किया उस दौर के सभी एडवांस्ड फीचर के साथ लेकिन इसके बाद भी महज 10 महीने में ही नकली नोटों की बाढ़ आ गई इसके पीछे थे 4 लोग दुकानदार आर्टिस्ट फोटोग्राफर और एक टेलर फोटोग्राफर ने असली नोट की फोटो खींची आर्टिस्ट ने उसका वाटरमार्क कॉपी किया और टेलर ने एक हफ्ते की प्रिंटिंग ट्रेनिंग ली। मेलबर्न शहर में दुकानदार के गैराज में नकली नोट छपने लगे। इस पूरे रैकेट को फंड कर रहा था रॉबर्ट किड नाम का एक क्रिमिनल। लेकिन एक दिन दुकानदार की भाभी घर में पड़ा $10 का नोट उठाकर चॉकलेट खरीदने गई। जब सेल्स गर्ल को टेक्सचर अजीब लगा तो उसने पुलिस को बताया, तब जाकर पूरे गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। इसी के बाद ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ने करीब 20 साल की मेहनत के बाद बनाया एक ऐसा नोट जिसकी कॉपी लगभग नामुमकिन थी। खास तरह का प्लास्टिक नोट 1988 में पहली बार इसे लॉन्च किया गया। आगे चलकर यही तकनीक 25 से ज्यादा देशों ने अपनाई। लेकिन ये नोट बनते कैसे हैं? इन नोटों को हाई क्वालिटी प्लास्टिक से बनाया जाता है, इसे BOPP कहते हैं। ये आम प्लास्टिक से ज्यादा लचीला और मजबूत होता है। प्लास्टिक नोट बनाने के लिए BOPP को हाई टेम्परेचर पर पिघलाकर पतली शीट बनाई जाती है। फिर शीट में होलोग्राम के लिए थोड़ी जगह छोड़कर बाकी को कलर किया जाता है। वैसे भारत में प्लास्टिक नोट का आइडिया नया नहीं है। ये पहली बार 2009 में RBI के एजेंडे में आया। तब पायलट बेसिस पर 100 करोड़ वैल्यू के 10 रुपए के प्लास्टिक नोट लाने की योजना बनी। 2012 में सरकार ने इसे मंजूरी दी। 2013 में मैसूर में इन नोटों के प्रोडक्शन के लिए मिल भी लगी, लेकिन फिर मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब 17 साल बाद फिर से वही आइडिया लौटा है। इस बार रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड यानी BRBNMPL ने प्लास्टिक नोट बनाने के लिए टेंडर जारी किए हैं। दुनिया भर की कंपनियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 10 और 20 रुपए के 100-100 करोड़ नोट लॉन्च होंगे। प्लास्टिक करेंसी के 3 बड़े फायदे हो सकते हैं। पहला, लंबी उम्र। पिछले 3 सालों में RBI ने 8,270 करोड़ नए नोट जारी किए हैं और 6,213 करोड़ पुराने नोट नष्ट किए हैं। कागज के नोट जल्दी खराब होते हैं, इनकी तुलना में प्लास्टिक नोट 2 से 6 गुना तक ज्यादा चलते हैं और फटने पर रिसाइकिल होकर फिर से नोट बन सकते हैं। दूसरा फायदा है छपाई की कम लागत होना। वैसे तो कागज की तुलना में प्लास्टिक नोट बनाना 30 से 60% महंगा पड़ता है, लेकिन ज्यादा समय तक चलने की वजह से इनकी औसत लागत कम हो जाती है। तीसरा फायदा, नकली नोटों पर लगाम। 2024-25 में 2,17,000 नकली नोट पकड़े गए। 2025-26 में 2,30,000। प्लास्टिक नोट की कॉपी बनाना बेहद मुश्किल है। नोट छापने वाली ब्रिटिश कंपनी डीला रुए के मुताबिक जिन देशों ने प्लास्टिक नोट अपनाए वहां नकली नोट घटे हैं। सीधे तौर पर प्लास्टिक नोट से कोई बड़ा नुकसान नहीं है, हाँ कुछ चुनौतियां जरूर हैं, जैसे शुरुआती लागत। प्लास्टिक नोट का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में काफी खर्च करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया की CCL सिक्योर और ब्रिटेन की डीला रुए जैसी दुनिया की गिनी चुनी कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। खुद की टेक्नोलॉजी बनाने में भी समय लग सकता है। ATM और कैश वेंडिंग जैसी मशीनें भी बदलनी होंगी। 2016 में प्लास्टिक नोट जारी करने के बाद इन्हें बदलने में ब्रिटेन को 4,300 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे। इसके अलावा जिन देशों में प्लास्टिक नोट आई वहां भी नकली नोटों का सर्कुलेशन पूरी तरह बंद नहीं हुआ, यानी जाली प्लास्टिक नोट भी चुनौती बन सकते हैं। अभी भारत में 10 और 20 के नोटों का ट्रायल होगा। सफल रहा तो बाकी नोट पर भी लागू हो सकता है। हालांकि फिलहाल पेपर करेंसी पहले की तरह चलती रहेगी।
4: Love authentic curries, but don't have hours to spend in the kitchen? Introducing Curry Masters, the complete curry mix that's ready to cook and packed with authentic flavor. No complicated recipes, no searching for spices. We've done all the hard work for you. Simply add your choice of meat, seafood, vegetables, or paneer and create a delicious restaurant-quality curry in minutes. Proudly Australian made and owned, Curry Masters supplies homes and businesses right across Australia. Make curry night easy with Curry Masters, authentic flavor made simple. Visit Curry Masters today or your nearest Indian Nepali spice shop and discover your new favorite curry.
2: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश।
5: अरे भाई क्या पसंद हो गया?
6: साहब भूत।
5: सुबह सुबह भांग वांग खा के आए हो क्या?
6: अरे साहब वो आदमी नहीं भूत है।
5: कौन आदमी?
7: मुझे तो अंतर्यामी लगता है।
8: खबरी भी तो हो सकता है। तुम यहीं पर रुको और देखना कि पुलिस यहाँ पर आती है या नहीं।
9: ड्राइवर ने बहुत कोशिश की साहब। अरे चलना तो छोड़िए साहब, गाड़ी हिली तक नहीं, एक बाबा को उतार दिया है।

0: करना क्या चाहते हो?
1: राम जी के पास पहुंचना है क्योंकि मुझे मेरी अम्मा के पास पहुंचना है।
2: दुनिया एक छलावा
3: कहां मिलता है आपको? ये पूरा दिन ध्यान में बैठकर मंदिर में जाकर अगर इतनी भक्ति करनी है ना, हम भी चले जाएंगे अपने मायके।
0: तुमका जहां क्लेश नहीं क्लेश नहीं।
4: गोपा गए तो हमने आपको बिल्कुल जंगलों में लिपट पाओ, बिल्कुल भोले।
5: आंखें वही देखती हैं जो मन में होता है और मन वही दिखाता है जो अंदर होता है। सीताराम,
6: एक बार बाबा ने अगर आपको अपना लिया तो चाहे आप कहीं पर हो, कितनी भी मुश्किल में क्यों ना हो, वो वहां से निकाल ही लेंगे।
7: हनुमान जी को छोड़ के जा रहे हैं, ध्यान रखना उनका।
5: चालीसा पढ़ते हो फिर भी डरते?
8: हनुमान जी को सोने का चढ़ावा नहीं चाहिए, चाहिए तो बस उनके भक्तों को प्रसाद मिले और भूखों को भोजन।
5: और इतनी दोपहर हो गई, खाना काहे नहीं खाए हो?
9: अभी सोकर उठे, रात भर नींद नहीं आती।
8: जब दिन भर सोते रहोगे तो रात में नींद आती।

0: तो ये था टेलर हनुमान अंश का, जिसका हम आज एक टिकट देने वाले हैं एक विजेता के लिए। और इसकी जो पृष्ठभूमि है नील नीम करौली बाबा, काफ़ी लोग इसके फॉलोअर यहाँ पे भी होंगे, वो हमारे साथ में शेयर भी कर सकते हैं अपनी स्टोरी। हमारा नंबर है 0421-590-791।
1: तो ये पिक्चर्स यतीन जी रिलीज हो चुकी है या होनी है?
0: ये रिलीज हो चुकी है।
1: हो चुकी है, ओके। और ऑस्ट्रेलिया में सिनेमा घरों में दिखाई जा रही है?
0: हाँ, मेरे ख्याल से तो ये है। अभी इसके बारे में देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे है।
1: अच्छा, तो ये नीम करौली बाबा का स्टीव जॉब्स का जो बता रहे थे, तो उसकी एक घटना मैंने भी लेकिन सोशल मीडिया पे पढ़ी थी, पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन वो घटना कुछ इस प्रकार थी कि ये शायद ड्रग्स वगैरह से शायद स्टीव जॉब्स जो थे पीड़ित रहे हैं बचपन में।
0: जी, जी,
1: तो कह रहे थे तो हाँ, तो उसी में भारत घूमने आए थे, फिर नीम करौली बाबा के पास गए। और
2: हाँ, बट तब तक नीम करौली बाबा थे नहीं, मतलब ये मिले नहीं हैं उनसे।
1: अच्छा,
2: ही केम।
1: अच्छा,
2: हाँ, ही ऑलरेडी।
0: इनका जन्म हुआ था 1900 में, सन 1900 में।
2: अच्छा, और एक आई थिंक उनका बाद में नाम रामदास बाबा ने रखा था, तो ही वाज अ प्रोफेसर ऑफ सम फिलॉसफी या कोई चीज, क्या कहते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। तो वो बाबा के पास रहते थे, तो एक एक किस्सा है कि यू नो लाइक उस समय जो सबसे पावरफुल ड्रग या कुछ मानी जाती थी,
1: LSD शायद
2: समथिंग था, और स्ट्रॉन्ग कोई, तो मे बी ही माइट बी टेकिंग या क्या होता होगा वो उतना में कोई ध्यान नहीं। बट लेकिन सुनते हैं कि बाबा ने एक दिन उसको बोला कि का है बचवा, और पूरी शीशी अपने उसने और चबा गए। अब ये इसको लगे कि अब बाबा का काम हो जाएगा, क्योंकि वो एक गोली, आधी गोली वॉज इनफ टू, वो तो चबा के अपना वो जैसे कुछ खाया। अच्छा, ही नहीं है।
1: तो एक्चुअली मैंने ये घटना स्टीव जॉब की, उसमें मैंने बताया ना सोशल मीडिया पे कई बार वो घटना भ्रामक भी होती है कि ये उन्होंने कहा, तो पता नहीं। चलिए, खैर, इसका हम कोई ऑथेंटिकेट नहीं करते।
2: एक और इंटरेस्टिंग सी, दो मिनट आप लूंगा। आज आपने खबर में सुना होगा गोपीनाथ मुंडे, ना गोपीनाथ क्या मुंडे, जो FDA के जो कमिश्नर
1: हैं। हाँ, आजकल काफी छापामारी चल रही है,
2: तो इंडिया में आजकल उसको बोलते हैं एनालॉग पनीर। तो एनालॉग
1: पनीर और एनालॉग पनीर,
2: एनालॉग पनीर। तो बेसिकली अभी इंडिया में हम लोग जो भी पनीर खा रहे हैं वो एनालॉग पनीर खा रहे हैं,
1: नकली। बेसिकली
2: नकली। और नकली क्या है, वो वेजिटेबल ऑयल या जो भी ऑयल को इमल्सीफायर डाल के कुछ कुछ करके लिटरली वो पनीर की शेप में। और इन्होंने पूरी
0: तुकाराम है उनका नाम,
2: तुकाराम मुंडे। यस, मैं अभी आज न्यूज में भी पढ़ा, तो उन्होंने हर जगह रेट, मतलब बड़े बड़े 5-star होटल में
0: मैकडोनल्ड बंद कर दिए, जो भी मतलब टॉप क्लास हो सकते हैं।
2: तो सडनली सारी पनीर की दुकानें बंद हो गई हैं इंडिया में, और शायद बाकी जगह भी, यूपी में और सब जगह भी वो एक पनीर के अगेंस्ट वो चल रहा है,
0: हर चीज़ में अडल्ट्रेशन।
2: तो
0: है
2: वही पनीर हम लोग सब जो हैं, तो वो दूध से ना बन के वो ऑयल।
0: संजीव जी, वैसे मैं एक बात बोलूँ ना,
2: फैक्ट्री में
0: दो माफिया हैं वैसे कहा जाता है
2: जी।
0: मेरी एक है आर्म्स माफिया, एक है फार्मास्यूटिकल माफिया
2: जी।
0: फार्मास्यूटिकल माफिया को अगर सस्टेन करना है तो आप किसी भी कंट्री में जाके एडल्ट्रेशन का खाने कर दो,
2: सही,
0: आपको सारी बीमारियां शुरू हो जाएंगी, फिर उनकी दवाएं शुरू हो जाएंगी, आपस में आ गए। तो भारत में आप पाएंगे कि जो पैकेज जा रहे हैं, जैसे चिप्स के पैकेज, सबका ऐसा हो गया कि आप जो खा रहे हो आप